0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: SBS हिंदी पर आपका स्वागत है. मेरा नाम है नबील और आज एक नया शो, एक नया दिन और एक नई शाम. शो शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलिन राज के वुरुंजरी और वुवुरुंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदरपूर्वक याद करते हैं जिनकी भूमि पर ये कार्यक्रम सुना जा रहा है. तो आज के शो की शुरुआत होगी ऑस्ट्रेलिया के हाउसिंग मार्केट से, जहां एक नया डेटा आया है और उसके अनुसार सिडनी और मेलबर्न में घरों की कीमतों में गिरावट देखी गई है और इसके पीछे के क्या कारण है और बाकी कुछ पहलुओं को भी हम समझने की कोशिश करेंगे. इसके बाद भारत से एक खास अपडेट, जहां फोटो जर्नलिस्ट गीतिका तालुकदार ने 2026 फीफा वर्ल्ड कप को कवर करने के लिए तीसरी बार एक्रेडिटेशन हासिल की है और अपने अनुभव और एक्साइटमेंट हमसे साझा किए हैं. फिर SBS एग्जामिन्स की एक खास हिस्से में बात होगी पब्लिक टॉयलेट्स की एक्सेसिबिलिटी और इनइक्वालिटी पर, कि कैसे ये एक महत्वपूर्ण अर्बन इशू बन चुका है ऑस्ट्रेलिया में. और अंत में SBS फ्लैशबैक से हम आपके लिए एक बार फिर से आज प्ले करेंगे मुंबई से एक इंस्पायरिंग कहानी, जहां पुराने जूते और चप्पलों को रिसाइकिल करके उन्हें दोबारा यूजेबल बनाया जा रहा है. अब तक लाखों जोड़ों को एक नया जीवन दिया जा चुका है, जिससे वेस्ट कम करने और जरूरतमंदों की मदद दोनों हो रही है. तो ये सारी रिपोर्ट्स आएंगी हमारे शो में और वो सब आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त हो गया है समय न्यूज फ्लैश का. मंगलवार 2 जून की खास खबरों के साथ मैं हूं नबील हसन. ऑस्ट्रेलिया में लगभग 30 लाख कर्मचारियों की सैलरी में 4.75% की बढ़ोतरी होगी. फेयरवर्क कमीशन ने फैसला किया है कि सबसे कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी $24.95 प्रति घंटे से बढ़कर अगले महीने $26.44 प्रति घंटे हो जाएगी. ये बदलाव 1 जुलाई से लागू होगा. यूनियनों ने 6% बढ़ोतरी की मांग की थी, जबकि ऑस्ट्रेलियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 3.5% बढ़ोतरी का सुझाव दिया था. फेयरवर्क कमीशन के जस्टिस एडम हैचर ने कहा है कि इस फैसले का उद्देश्य जेंडर पे गैप को कम करने में मदद करना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम वेतन पाने वाले कई कर्मचारी महिलाएं हैं जो कैजुअल या पार्ट टाइम काम करती हैं. ऑक्सफैम की नई रिपोर्ट में पाया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे अमीर 20 लोग अब देश के सबसे गरीब 30 लाख परिवारों से ज्यादा संपत्ति रखते हैं. गरीबी विरोधी संगठन यानी एंटी पॉवर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने 2026 ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू रिच लिस्ट का विश्लेषण किया. रिपोर्ट में पाया गया है कि इस साल पहचाने गए 178 अरबपतियों की कुल संपत्ति $686 अरब से अधिक हो चुकी है. स्थानीय अरबपतियों की कुल संपत्ति में 2025 से 2026 के बीच $25.67 अरब की बढ़ोतरी हुई, जो लगभग $49,000 प्रति मिनट के बराबर है. ऑक्सफैम ने गणना की है कि ऑस्ट्रेलिया के अरबपतियों की एक साल की संपत्ति वृद्धि से 30 लाख घरों का एक साल का किराना खर्च पूरा किया जा सकता है, 10 लाख ऑस्ट्रेलियाई लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जा सकता है और देश के हर घर के एक साल के बिजली बिल का भुगतान किया जा सकता है. ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 28 मिलियन तक पहुंच गई है. ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की पॉपुलेशन क्लॉक के अनुसार यह आंकड़ा आज सुबह 6 बजे दर्ज किया गया. एबीएस के अनुसार अनुमान है कि देश की कुल जनसंख्या हर 75 सेकंड में एक व्यक्ति बढ़ रही है. वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2028 में 29 मिलियन और 2031 तक 30 मिलियन तक पहुँच सकती है. ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा फर्स्ट नेशन थिंकर्स, लीडर्स और बदलाव लाने वालों का सम्मेलन गोल्ड कोस्ट में चल रहा है. ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ एबोरिजिनल एंड टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर स्टडीज समिट में विशेषज्ञ इंडिजिनस समुदायों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं. इस साल ये आयोजन पहली बार पूरी तरह सोल्ड आउट हो गया है. बैंकॉक में LGBTQI कार्यकर्ता थाईलैंड में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता मिले एक साल से अधिक होने पर जश्न मना रहे हैं। थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया में ऐसा करने वाला पहला देश बना था। यह अवसर प्राइड मंथ के दौरान मनाया जा रहा है। थाईलैंड 2030 में वर्ल्ड प्राइड कार्यक्रम की मेजबानी के लिए उम्मीदवार है। ऑस्ट्रेलियन डैनी लेन, जो दो साल पहले बैंकॉक चले गए थे, SBS थाई को बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में बड़े होते समय उन्हें बुलिंग का सामना करना पड़ा, जबकि थाईलैंड की संस्कृति ने उन्हें आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने में मदद की है। और अब खबर भारत से। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 5 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है, जिनमें 4 विभिन्न हाईकोर्ट के चीफ जस्टिसेस और सीनियर एडवोकेट वी मोहन शामिल हैं। ये नियुक्तियां उस फैसले के बाद हुई हैं, जिसमें 5 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 की गई थी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि राष्ट्रपति ने इन नियुक्तियों को मंजूरी दी है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 37 पद भर जाएंगे, जबकि एक पद अभी भी खाली रहेगा। यह था आज का न्यूज फ्लैश नबील हसन के साथ। अन्य खबरों और जानकारी के लिए बने रहिए SBS हिंदी पर। हमारी वेबसाइट है sbs.com.au/hindi। आप सुन रहे हैं SBS हिंदी, मेरा नाम है नबील और न्यूज फ्लैश के बाद आइए बढ़ते हैं अपने शो की पहली रिपोर्ट की तरफ। नए आंकड़ों के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के 2 सबसे बड़े शहरों में घर खरीदने की कीमतें कम हो गई हैं और बात हो रही है यहां मेलबर्न और सिडनी की, जो ऑस्ट्रेलिया के शायद सबसे बड़े 2 शहर है। क्या है इसका कारण और क्या ये मौका है नए होम बायर्स के लिए? आइए जानते हैं इन्हीं सब पहलुओं के बारे में अनीता ब्रार की इस रिपोर्ट में।
3: रिसर्च एजेंसी क्वार्टरलिटी के नए आंकड़ों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के 2 सबसे बड़े शहरों में घर

0: खरीदने की कीमतें कम हो गई हैं। मई में सिडनी में घरों की कीमतें 0.9% और मेलबर्न में 0.8% गिरी। एसीटी में भी 0.2% की गिरावट आई, जबकि दूसरे राज्यों और टेरिटरीज की राजधानियों में कीमतें तो बढ़ी लेकिन ग्रोथ पहले के मुकाबले कम थी। एसपीएस हिंदी पर मैं हूं अनीता बरार। ऑस्ट्रेलिया के दो सबसे बड़े शहरों में घरों की कीमतों में गिरावट आ रही है। पूरे देश में कोटालिटी का नेशनल होम वैल्यू इंडेक्स मई महीने में फ्लैट रहा, यानी कि बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहा। दोनों ही बाजारों में पूरे 1% पॉइंट की गिरावट नहीं आई। सिडनी में घरों की कीमतों में 0.9% की गिरावट आई, जबकि मेलबर्न में ये गिरावट 0.8% थी। ये पिछले साल नवंबर में उसके साइक्लिक हाई यानी चक्रीय उच्चतम से 2-3% कम है। एसीटी में भी घरों की कीमतें 0.2% कम थी। कोटालिटी का कहना है कि बाकी राजधानियों में कीमतों में बढ़ोतरी तो जारी रही लेकिन ग्रोथ की रफ्तार कम हो रही है। पर्थ और डार्विन में महीने का फायदा 1.5%, ब्रिस्बेन और होबार्ट में 0.9% और एडिलेड में 0.5% रहा। कोएलिशन ट्रेजरी के प्रवक्ता टिम वेंसल का कहना है कि ये भविष्य में उम्मीद की कमी का संकेत है।
1: The reason house prices are feeling an adjustment is because people aren't confident about their future. I'll never welcome a time where Australians feel less confident about their future.
0: Kotality ke Tim Lawless ka kehna hai ki federal budget kai factors mein se sirf ek hai. Yani kai karan hain. Unhe lagta hai ki asal mein ye pichle saal ke aakhir mein shuru hua tha aur ab isme kuch tezi aa rahi hai.
2: There's a lot of reasons for this this flat outcome in our national index. You can go all the way back to the end of last year when affordability challenges and serviceability pressures were starting to slow the market. But then since then, we've obviously seen 75 basis points of rate hikes. We've seen a crisis in confidence amid what's happening in the Middle East and higher fuel costs. And now we've seen the federal budget handed down, which we're expecting to be a disincentive for investment activity as well. So there's a whole range of things, but I think foundationally, this really started late last year and has been gathering some momentum.
0: ऐसी अटकलें हैं कि कीमतें 10% तक गिर सकती हैं, लेकिन ट्रेजरर जिम चार्मर्स का कहना है कि ट्रेजरी मॉडलिंग से पता चलता है कि घरों की कीमतें बढ़ती रहेंगी, लेकिन पहले से लगभग 2% अधिक धीरे। वो कहते हैं कि एक बार फिर जब हमारे हाउसिंग मार्केट में जो हो रहा है उसके लिए बजट ही अकेला फैक्टर नहीं है। उनके अनुसार हाल के महीनों में कई बार इंटरेस्ट रेट की बढ़ोतरी देखी गई है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर आर्थिक हालात नरम हुए हैं।
3: Obviously, I'm aware that there are a number of different forecasts about the outlook for house prices. The Treasury modelling that we provided in some detail on budget night says that the Treasury expects house prices to continue to grow, but about 2% more slowly than before. That's about $19,000 on the median house price. And so that's Treasury expectations, but I acknowledge that different organisations and different entities have different forecasts. Once again, the budget is not the only factor when it comes to what's happening in our housing market. We have seen multiple interest rate hikes in recent months. We have got a softening of economic conditions more broadly as a consequence of the war in the Middle East, and so we're seeing all of that play out.
0: हालांकि बजट में टैक्स में बदलाव ही घरों की कीमतों में गिरावट का अकेला कारण नहीं है, लेकिन टिम लॉलेस का कहना है कि इसका असर ऑक्शन क्लीयरेंस रेट पर भी देखा जा रहा है।
2: Last weekend, the early numbers came in at 54%, which was the lowest clearance rate we've seen since April of 2020, just as COVID was becoming a thing. So I think there's some clear indirect evidence that the budget's had a negative impact on sentiment, and we are expecting that'll flow through over the coming months.
0: लेकिन जिम चार्मर्स का कहना है कि क्लीयरेंस रेट पर कई फैक्टर्स का भी असर पड़ता है, जिसमें रिजर्व बैंक के रेट में बढ़ोतरी और बड़े आर्थिक हालात, साथ ही बजट में पॉलिसी में बदलाव शामिल है।
3: Some of those clearance rates were coming down already, and the budget is not the only factor when people are thinking about those participating in those auctions. But if we are making it easier for first home buyers,

0: to get a fair crack at auctions, then that's a good thing. We've only seen the preliminary numbers for Saturday. Some of those preliminary numbers have come up a bit. In other markets, they've gone down a bit. We'll see the final numbers in due course. But the budget is not the only factor when it comes to those auction clearance rates. There are other factors like interest rates, and that's why we had already seen some movement in auction clearance rates before the budget.
1: और अब जबकि घरों की कीमतें गिरने लगी हैं, तो किराए के बढ़ने की उम्मीद है. नेशनल वैकेंसी रेट 1.5% पर कम है, जिसका अर्थ है कि डिमांड ज्यादा है और संख्या में बढ़ोतरी जारी रह सकती है. कोटालिटी डेटा मई में 0.6% की बढ़ोतरी दिखाता है, जो अप्रैल की संख्या के बराबर थी, लेकिन 2026 के पहले तीन महीनों की तुलना में थोड़ी कम थी. SBS न्यूज के लिए केरिन थॉमस और SBS हिंदी के लिए इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया अनीता परार ने.
2: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी और अभी अभी अनीता बरार की आपने रिपोर्ट सुनी जो इस चीज़ पे थी कि मेलबर्न और सिडनी दो बड़े शहरों में घरों की कीमतें कम हो रही हैं और ये एक रिपोर्ट से पता चला है. अगर आप ये ऑडियो कार्यक्रम पॉडकास्ट पर से सुनना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं sbs.com.au/hindi और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर लाइक और फॉलो करिए, जहाँ आपको ढेर सारा कॉन्टेंट, ऑडियो पॉडकास्ट, वीडियो कॉन्टेंट, रील्स और कम्यूनिटी से जुड़ी कई चीज़ें पता चलती रहती है. चलिए अब वक्त हो गया एक एड ब्रेक का, लेकिन एड ब्रेक से पहले आज के शो का सवाल, और सवाल वो ये है कि कई बार ऐसा होता है ना कि दिन बड़ा हल्का गुजर रहा होता है, मूड अच्छा नहीं होता है, कुछ करने का जी नहीं चाहता है, लेकिन ऐसे वक्त में अगर कोई कॉमेडी फिल्म देख ली जाए तो फिर आपका मूड अच्छा हो जाता है. तो आपकी सबसे फेवरेट कॉमेडी मूवी कौन सी है आज हमें मैसेज करके बताइए. 0439-799-767 हमारा नंबर है. पुरानी फिल्म हो, नई फिल्म हो, हम देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि आपकी वॉच लिस्ट क्या है, कौन सी कॉमेडी मूवी है, और इसी से शायद हम सबको भी आइडिया मिल जाए कि जो फिल्में हमने नहीं देखी हैं वो हम देखेंगे. 0439-799-767 आपकी फेवरेट कॉमेडी मूवी क्या है, आपके जवाब का इंतजार रहेगा. मिलता हूं आपको एक छोटे से एड ब्रेक के बाद.
3: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
4: And one, and two, and three, and four, and seven.
3: Meanwhile, Road You can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
5: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
3: It feels good to be a Road You. It feels good to Geico.
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
7: Starting a new life in Australia isn't easy.
8: A lot of companies have rejected me.
9: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
7: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
2: एड ब्रेक के बाद हमारे साथ वापस जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और हमने एड ब्रेक से पहले एक सवाल पूछा था आज के शो का कि आपकी फेवरेट कॉमेडी फिल्म कौन सी है जिससे आपका मूड एकदम ताज़ा हो जाता है और आप उसे कई बार देख सकते हैं. एक मैसेज आया है क्यूरी का, वो लिखती हैं कि मेरी सबसे पसंदीदा कॉमेडी मूवी है बॉम्बे टू गोवा. उन्हें पसंद है. और आपकी फेवरेट क्या मूवी है 0439-799-767 पर मैसेज करके बताइए. मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे बहुत सारी मूवीज़ पसंद हैं, पुराने ज़माने की भी, आज के ज़माने की भी, और उनमें से एक जो है वो है गोविंदा की हसीना मान जाएगी. और वो बहुत ही मज़ेदार मूवी है जो मुझे लगता है कि एक कॉमेडी में काफ़ी इंटरेस्टिंग है. और वो वक्त था गोविंदा का जब उनकी मूवीज़ में बड़ा मज़ा आता था. तो 0439-799-767 आपके मैसेज का इंतज़ार रहेगा. नाम, अपना नाम भी लिखिए और फिल्म का नाम भी, एक ऐसी कॉमेडी फिल्म का जो आपको पसंद है. चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं.

2026 फीफा वर्ल्ड कप को कवर करने के लिए भारत की फोटो जर्नलिस्ट गीतिका तालुकदार को एक बार फिर एक्रेडिटेशन मिला है। ये उनका तीसरा मौका है। वो इस अनुभव को लेकर बेहद उत्साहित हैं और कहती हैं कि इस टूर्नामेंट का माहौल और ऊर्जा इसे बाकी खेल आयोजनों से अलग बनाते हैं। आइए इस अंश में सुनते हैं कि उनकी क्या कहानी है और उनसे बात की है SBS हिंदी के नताशा कॉल ने।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं नताशा कॉल SBS हिंदी टीम से। स्पोर्ट्स फोटोग्राफी सिर्फ खिलाड़ियों के गोल करने या जीत के जश्न की तस्वीरें लेने तक सीमित नहीं होती। ये उन भावनाओं, दबाव, उत्साह और उन अनमोल पलों को कैमरे में कैद करने की कला है जो कुछ ही सेकंड में गुजर जाते हैं, और यही गीतिका तालुकदार की पहचान बन चुकी है, जो आज हमारे साथ जुड़ रही हैं और बताएंगी कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी वो किस प्रकार कर रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में गीतिका ने रशिया और कतर में आयोजित फीफा वर्ल्ड कप, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुए फीफा महिला वर्ल्ड कप, टोक्यो और पेरिस में ओलंपिक्स और IPL के कई सीजन, कॉमनवेल्थ गेम्स और ICC टूर्नामेंट जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों को अपने कैमरा के नजर से दुनिया के सामने रखा है। उनकी बार बार मिलने वाली फीफा एक्रेडिटेशन अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि बताई जाती है। तो आइए जुड़ते हैं गीतिका तालुकदार से।
1: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
0: गीतिका, सबसे पहले हमें बताएं कि एक भारतीय फैन को आप फीफा किस तरह से समझाएंगी, क्या है लैंग्वेज ऑफ फीफा?
1: जी, फीफा तो सबको पता है कि ये विश्व का एक महारण है जहाँ पर सारे खिलाड़ी चार सालों में एक बार इकट्ठे होते हैं। तो ये एक विश्व का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है, तो काफी एक्साइटेड हूँ मैं। और इस बार ये तीन अलग अलग देशों में हो रहे हैं
0: जी।
1: तो और भी ज्यादा एक्साइटमेंट है, और एक कोशिश करेंगे जितना हो सकता है अच्छी तरह से कवरेज करने की।
0: अच्छा, कवरेज से पहले आप किसी प्रकार की कोई स्पेशल प्रिपरेशन करती हैं जब मैच को कवर करने जाती हैं?
1: एक्चुअली हमारा जो भी रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली डिमांड होते हैं न्यूज़पेपर से और एजेंसी से, जो डिमांड होते हैं हम उसी के आधार पर ही सारा कुछ कवर करते हैं
0: जी।
1: और बेसिकली इंडियन फैंस यदि आप ईस्टर्न जोन में आए इंडिया में तो हम एक बहुत बड़ा फुटबॉल फॉलोइंग फैंस यहाँ रहते हैं ईस्टर्न इंडिया में, तो क्रेज फुटबॉल का कोई कम नहीं है क्रिकेट से यहाँ पर
0: जी।
1: और हम लोग फुटबॉल, आप यदि आते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ तो हम लोग बहुत ज्यादा फुटबॉल क्रेजी भी है, और तो हम लोग उस हिसाब से ही कवरेज करते हैं। जो कि मेगा स्टार है सभी जानते हैं, रोनाल्डो, मेसी, ये जो टीम्स है अर्जेंटीना, पोर्टुगल, स्पेशली ऑल्सो एम्बाप्पे इज वन ऑफ आवर वेरी जो बड़े खिलाड़ियों में से शामिल है, तो लोगों का क्रेज रहता है उनके प्रति, तो हम लोग उस हिसाब से ही जो प्लेयर बहुत ज्यादा पॉपुलर है, डिमांड में है, तो उनको ही कवरेज करते हैं
0: जी।
1: और हमारा जैसे हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिलती है उनके ट्रेनिंग कैंप्स में जाने की तो हम लोग ट्रेनिंग कैंप्स में जाते हैं।
0: अच्छा।
1: और वहाँ पे उनके ट्रेनिंग सेशंस हम लोग लेते हैं, फिर हमारा पोस्ट कॉन्फ्रेंस होता है, प्री कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, खेल के पहले वार्म अप सेशंस होते हैं उनका होता है, लाइव कवरेज हम लोग स्पॉट से करते हैं, और उसके बाद पोस्ट कॉन्फ्रेंसेस जो पोस्ट मैचेस फोटो विजुअल हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है वो भी करते हैं।
0: अच्छा।
1: जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं हम लोग वो भी करते हैं, तो वो सारा कवर हम लोग को करना पड़ता है।
0: अच्छा, माहौल कैसा रहता है, जो जो एनर्जी लेवल्स हैं जैसे क्रिकेट मैचेस में हम लोग महसूस करते हैं, क्या वही एनर्जी इन फीफा मैचेस के दौरान भी महसूस की जाती है?
1: बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा।
0: अच्छा।
1: उससे भी डबल और उससे भी डबल, क्योंकि फुटबॉल एक ऐसा, क्रिकेट जो है कि वो डेफिनेटली इंडिया में लोग बहुत पसंद करते हैं और क्रिकेट जो है 7 या 8 कंट्रियों में ही बहुत ज्यादा पॉपुलर है। क्रिकेट को बहुत ज्यादा बाहर के लोग, स्पेशली जो फुटबॉल प्रेमी जो कंट्रीज है वहाँ पे क्रिकेट का बहुत ज्यादा क्रेज है, तो यहाँ पे क्या है कि ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग

0: आते हैं, गर्मियों की छुट्टी रहती है तो पूरे वर्ल्ड से, पूरे विश्व से लोग इकट्ठा होते हैं
1: जी
0: फुटबॉल मैचेस को देखने के लिए। तो इसका तो एक अलग ही पैमाना है, इसका अलग मतलब एक होता है क्रेज, स्पेक्टेकल्स, जो भी स्पेक्टेकल्स आते हैं वहां पे, ये
1: जी
0: अलग ही लेवल का एक क्रेज होता है, ये अलग माहौल है, बहुत अच्छा लगता है।
1: तो मान लीजिए आप
0: जी
1: एक मिडिल ऑफ द मैच, बहुत ही इंटेंस मैच चल रहा है और आप किसी को इंडियन फ्लैग पकड़े हुए देखती हैं, तो लेंस किस तरफ घूमता है इंटेंस?
0: बिल्कुल बिल्कुल घूमता है, बिल्कुल बिल्कुल घूमता है इंडियन। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ही मैच, बहुत ज्यादा मैच यदि उस तरीके से एक सेंसिटिव जोन में है और उस टाइम पे, तो डेफिनेटली वी आर वेरी फोकस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर यू नो मोमेंट, बिकॉज इफ वी लूज द अटेंशन वी मिस दैट पर्टिकुलर पिक्चर्स। बट देन इंडियन फैंस का क्या है कि वी गॉट सम टाइम इन बिटवीन, बिकॉज जब हम लोग का ब्रेक सेशन होता है, जो खेल के बीच में जो हाफ टाइम होता है, तो वी फॉलो ऑल द इंडियन फैंस की कहाँ है। सो एवरीबडी लाइक वी वेन एवर वी सॉ इंडियन फ्लैग, हम लोग दौड़ के जाते हैं कि अरे
1: अच्छा
0: नहीं नहीं मुझे तो लेना ही है। हाँ, तो डेफिनेटली हमारा फोकस रहता ही है, इंडियन जो फैंस वहाँ बैठे रहते हैं तो डेफिनेटली हमारा टारगेट रहता ही है कि उनके, हम लोग ना ज्यादा से ज्यादा
1: जी
0: उनका कवरेज करें। तो वी डेफिनेटली हैव टू गेट यू नो, हम लोग को मतलब अच्छे इक्विपमेंट्स की बहुत जरूरत होती है, तो
1: अच्छा
0: हम लोग उस हिसाब से ही प्रिपेयर करते हैं। हम लोग के साथ में कम से कम भी हम लोग का 3 से 4 कैमराज रहते हैं, और एक कैमरा रिमोट से भी हम लोग ऑपरेट करते हैं, और ये सारा जो है माहौल हम लोग को सेट करना पड़ता है ये जो खेल शुरू होने के कम से कम भी 2 घंटे पहले। तो हम
1: अच्छा
0: लोग वी प्रिपेयर, हम लोग को सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी पड़ती है, सारे मैचेस तो में ही लेनी पड़ती है, क्योंकि सारे सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद ही हमारी एंट्री हो पाती है पिच में।
1: अच्छा
0: और वो सिक्योरिटी सारे क्लियरेंस करने के लिए हम लोग को वहां पे कम से कम 3 घंटे पहले मौजूद होना पड़ता है,
1: जी
0: और फिर हम लोग को हमारे सारे जितने भी इक्विपमेंट्स है वो सारे सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए जाते हैं, फिर हमारा खुद का पूरा होल बॉडी सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए वो भी स्कैन होता है, उसके बाद ही हमारी एंट्री हो पाती है। तो
1: बहुत
0: हम
1: ही
0: लोग को खेल,
1: जी एक बहुत
0: हाँ
1: ही इंटेंस आप बता रही हैं, एक फिजिकल स्टेमिना भी
0: जी,
1: मेंटेन करना होता है, मेंटल शार्पनेस भी मेंटेन
0: बिल्कुल
1: करनी
0: बिल्कुल
1: होती है वो
0: बिल्कुल
1: सब शूट करने के लिए,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो
0: जी
1: बहुत
0: जी बहुत
1: ही
0: फोकस रहना पड़ता है,
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: फोकस
1: जी
0: रहना पड़ता है, और हमारे इक्विपमेंट इतने हैवी होते हैं ना कि उनको कैरी
1: जी
0: करना, फिर समर में होता है तो फिर गर्मी है, एंड देन तो ये बहुत सारे कुछ हम लोग को रखना ही पड़ता है मतलब, और साथ में हमारे सब कुछ, हमारे पर्सनल बिलोंगिंग्स भी रहते हैं, तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। उसी के साथ जो भी है, जो भी कुछ हो रहा है एक्सक्लूसिव यदि कुछ हो रहा है, फिर उस पर भी फोकस रखना पड़ता है। तो ये ओवरऑल काफी हैक्टिक होता है, बट देन अगेन इट्स फीफा, तो हम लोग को अच्छा भी लगता है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है।
1: गीतिका, अगर हम स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिज्म की बात करें तो खासकर इस प्रोफेशन में पुरुष ही ज्यादा अक्सर नजर आते हैं, तो महिला होने के नाते आपको किस प्रकार के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं?
0: या सो इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड, तो उस टाइम पे जब मुझे देखे थे लोग तो वो हंसते ही थे मेरे ऊपर कि पता
1: अच्छा
0: नहीं कहाँ से आ गई, कितने दिन टिकेगी, है ना। तो मेरे यहाँ पे मैं अकेली इकलौती मतलब फीमेल थी, नाउ मेरे 20 साल पूरे हो गए
1: अरे वाह
0: इस फील्ड में, और इन 20 सालों में मेरे नॉर्थ ईस्ट से, आई थिंक स्पेशली पूरे नॉर्थ ईस्ट से मतलब जो भी है मेगा जितना इवेंट है, ओलंपिक्स, आई हैव कवर्ड 2 ओलंपिक्स, और तो ये जितने भी मेगा है वो मेरे अलावा और किसी ने यहाँ पे कवर नहीं किया,
1: जी
0: किसी मेल ने भी नहीं किया, तो उनको अपॉर्चुनिटी, तो मुझे लगता है कि 20 सालों का ये सफर भी किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि ये इतना दिन टिक जाएगी। तो
1: जी
0: शुरुआत में तो ऐसा था कि लोग हंसते थे मेरे ऊपर, तो उस वक्त लोग मुझे देखते थे कि, तो वो सोचते थे कि कैसे आ गई, तो देवे
1: जी
0: लाइक
1: जी
0: गॉसिप मेरे पीछे की, पता नहीं क्योंकि पहले इस फील्ड में कोई आता ही नहीं था,
1: जी
0: तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी लड़कियां जो है वो मोटिवेट हो रही है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गीतिका हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।

0: improving speed, reliability, and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial line. Restrictions apply.
1: Landu listens to waiting room music at the dentist.
2: It's like nitrous oxide for the ears.
1: Boatview is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
2: Like reggae?
1: Sure.
2: Or a sea shanty?
1: If that's your thing.
2: Or pirate metal.
1: This boat trip is going to be interesting.
3: Don't you love it? Oh, it's so good!
1: It feels good to be Boatview. It feels good to Geico.
4: Life's easier when things are convenient. That's why we developed Cameron Grove Estate, a relaxed family-oriented community just 30 minutes from Newcastle. Imagine brand new facilities to make life easy right on your doorstep. Groceries, delicious dining, cute cafes, boutique shops, parks and playgrounds, even a library, all a short stroll from the front door. And with the highway only a short drive away, the workday commute is a breeze. Create a life of blissful convenience. Book a private inspection today. Visit CameronGroveEstate.com.au.
1: Landu gets lost in his office building.
5: Man, why does every floor look the same?
1: Boatview is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
5: Man, getting lost out here is the best.
1: And with Geico, Boatview can add 24/7 access to towing, too.
5: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
1: It feels good to be Boatview. It feels good to Geico.
6: sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए. ताजा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए. sbs.com.au/hindi पर जाएं. क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर. हमारा पेज लाइक करें. SBS हिंदी फेसबुक पर भी है.
7: SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है. मेरा नाम है नबील और आज के शो में हम पूछ रहे थे कि आपकी फेवरेट कॉमेडी मूवी कौन सी है. और इतने सारे मैसेजेस आते हैं तो बड़ा मजा आता है. और कुछ लोगों ने मैसेज किया है कि किसी की फेवरेट मूवी है चुपके चुपके. वो अपना नाम नहीं लिखा है उन्होंने, बट थैंक यू फॉर योर मैसेज. और एक मैसेज आया है फ्रॉम सिडनी, शान फ्रॉम सिडनी. कहते हैं कि मुंबई एक्सप्रेस इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर लाफ्स. और कमल हसन और साथ में विजय राज के ये डायलॉग और एक्टिंग बड़ी पसंद आती है. तो वो मैसेज आ रहा है. विद्या लिखती हैं, हेलो नबील, माय फेवरेट कॉमेडी मूवी इज हेरा फेरी एंड आल्सो मेरे बाप पहले आप एंड आल्सो वेलकम वन. बड़ी सारी मूवीज आ रही हैं. खोसला का घोसला ये भी किसी ने भेजा है और उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, बट खोसला का घोसला मेरी लिस्ट में भी बहुत ऊपर है कॉमेडी मूवीज की. और कमल जी मैसेज करते हैं, जय श्री कृष्णा आपको भी और एंजॉइंग द शो. और वो लिखते हैं कि फुकरे की जो सीरीज है उसमें भी बड़ा मजा आता है कॉमेडी मूवी में. तो आपका क्या आइडिया है, कौन सी मूवी है? 04397997667 पर मैसेज करिए और बताइए कि आपको कौन सी कॉमेडी फिल्म पसंद है जिससे आपका जो मूड है वो मज़ेदार हो जाता है और वो एक ऐसी मूवी है जो आप कई बार देख सकते हैं. 04397997667 हमारा नंबर है. और एक गाने का वक्त हो गया है. गाने के बाद वापस आएंगे, एक रिपोर्ट सुनेंगे और रिपोर्ट के बाद फिर से गाने आपके लिए प्ले करेंगे. सुनते रहिए SBS हिंदी.

0: SBS हिंदी हर समय उपलब्ध है। जब भी आप चाहें किसी भी मोबाइल पर हमारे पॉडकास्ट बिल्कुल मुफ्त सुने sbs.com.au/hindi पर जाएं या SBS ऑडियो ऐप डाउनलोड करें।
1: SBS हिंदी पर वापस हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है नबील और अब वक्त

0: Advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: कह रहे ओबामा, ये बड़ी मजेदार मूवीज हैं जो वो जरूर देखते हैं, और चाची 420 भी, चाची 420 तो मुझे लगता है एक ऐसी मूवी है जो कई लोगों ने देखी होगी। और गणेश मेलबर्न से लिखते हैं कि धमाल इज माय फेवरेट मूवी। तो बहुत सारे आज जवाब आए हैं, और इनमें से हमें भी आइडिया मिल जाएगा कि वीकेंड पे कौन सी मूवी देखी जाए। और आपको भी अगर कोई रिकमेंडेशन है तो 04397997667 पर मैसेज करके बताइए कि आपकी फेवरेट कॉमेडी मूवी कौन सी है। और इस वक्त प्ले करेंगे आपके लिए गाना, और गाने से वापस आकर एक आखिरी रिपोर्ट आज की, और फिर एक और गाने से अंत करेंगे आज के शो का। एंजॉय करिए।

0: SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब शो के अंत में हम लोग पहुंच गए हैं, एक आखिरी रिपोर्ट सुन लेते हैं और SBS फ्लैशबैक से ये रिपोर्ट हम आपके लिए एक बार फिर से प्ले कर रहे हैं। ये कहानी है भारत से, जहां मुंबई में रमेश और शेयंस पुराने जूतों और चप्पलों की को रिसाइकिल करके उन्हें फिर से पहनने लायक बनाते हैं और अब तक वो लाखों जोड़े तैयार कर चुके हैं, जिससे जरूरतमंदों को सस्ते विकल्प मिलते हैं और पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर पड़ता है। आइए सुनते हैं SBS फ्लैशबैक से एक बार फिर फैसल फरीद की ये रिपोर्ट।
1: मुंबई में उत्तराखंड के एक युवक रमेश धामी बॉलीवुड में किस्मत आजमाने आते हैं, लेकिन किस्मत ने कुछ और लिखा था। वो बॉलीवुड से इतर प्रोफेशनल एथलीट बन गए, मैराथन में भाग लेने लगे। उसके बाद किस्मत ने एक टर्न और लिया। अपनी प्रैक्टिस के दौरान उनकी मुलाकात श्रियान से होती है, जो अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी करके आए थे, और यहीं पर एक नए आइडिया ने जन्म लिया। आइडिया था पुराने जूतों को नया करके जरूरतमंद तक पहुंचाना। ऐसे बच्चे जिनके पास पहनने को अच्छे जूते नहीं हैं, या फिर ये फेंके हुए जूते नष्ट करने की प्रक्रिया में प्रदूषण को और बढ़ावा देते हैं, इन दोनों बातों को समझना। आमतौर पर लोग साल भर में दो तीन जोड़ी जूते फेंक ही देते हैं। रमेश और श्रेयंस ने यह सोचा कि अगर ये सब जूते कैसे भी इकट्ठा करके उनको नष्ट न किया जाए, बल्कि उनको किसी के पहनने लायक बना दिया जाए। आइडिया सिंपल था और इसी पर उन्होंने काम किया, और धीरे धीरे उन्होंने लाखों जूते अपसाइकिल कर डाले। आज उनके पास बहुत से कॉरपोरेट सहयोगी हैं, जहां पर लोग उनको जूते डोनेट करते हैं, लोग खुद भी अपने पुराने जूते उनको देते हैं। इसके अलावा अब ये अपनी संस्था ग्रीन सोल फाउंडेशन के तहत जूते इकट्ठा करके उनको पहनने लायक बनाते हैं। कैसे ये सब शुरू हुआ, रमेश इस बारे में SBS को बताते हैं।
2: मेरा नाम रमेश धामी है, मैं फाउंडर हूँ ग्रीन सोल को। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। 2007 में मुंबई आया था हीरो बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए। एक्टर नहीं बना, ऐसे छोटे मोटे काम करता था। फिर मुझे साथी संस्था के लोगों से मिला, उन्होंने बोला कि हमारे संस्था में आइए, आप खाना पीना रहना सब फ्री है, अलग अलग एक्टिविटी कराते हैं। तो वहाँ ज्वाइन किया मैंने, फिर वहाँ रहता था ऐसे। फिर वहाँ उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसा स्पोर्ट्स करना है, क्या बोला हाँ करना है। तो मैराथन ज्वाइन किया मैंने। मैराथन से करते करते मैं अलग अलग भाग, मतलब ऐसे अलग अलग मैराथन भागा, तो वहाँ से रियलाइज हुआ कि मेरे हर साल 4 से 6 पैर खराब हो रहे हैं, जूते जो खराब हो रहे हैं, जल्दी खराब, मतलब सोल जल्दी खराब नहीं होते थे पर साइड से फट जाते थे। और नाइकी प्यूमा ऐसे बड़े ब्रांड, अच्छे ब्रांड और महंगी, मेरे को तो स्पॉन्स के थ्रू मिलते थे साथ ही ऐसे। तो और मैंने PDB ज्वाइन किया और

0: डीबी में साबे सर करके उन्होंने हमको कोचिंग कराया, और श्रियांश भी आता था, तो श्रियांश भी एक सेम कोच था, तो साथ में वर्कआउट रनिंग करते थे। तो श्रियांश भंडारी मिलते थे, हाई होलो ऐसे होते थे हमारे, मिलते थे ऐसे, हाय बोलो कैसा चल रहा है, एक दूसरे के बारे में ऐसे बात पूछते थे, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो बड़ा ही वो पूछ रहा हूँ मैं रनिंग के बारे में, मैं ऐसा ओलंपिक खेलना चाहता था इंटरनेशनल, बट आई थिंक मैं इतना कुछ कर नहीं पाया उतना, पर नेशनल प्लेयर हूँ, मैं 300+ मैराथन भाग चुका हूँ, और मेरे जूते हर 4 से 6 पैर इसलिए ज़्यादा ख़राब होते थे क्योंकि मैं हफ्ते का 200 से 250 किलोमीटर रनिंग करता था, जिससे साइड में पड़ जाते थे जो जूते, जल्दी ख़राब इसलिए होते थे 6 पर, और मुझे लगा कि इतने जूते ख़राब हो रहे हैं, तो फिर मैं सोचा कि कुछ ना कुछ मैं करूँगा ऐसा, जूते जूता बनाऊँगा करके मेरे माइंड में था। पर एक बार श्रियांश का कॉल आया कि रमेश तुम्हारे पास कुछ ऐसा आइडिया है जिससे हम टाटा रिलायंस ऐसी कंपनी बाई करती और वो कंपनी करते हैं इसको। मैं बोला ठीक है, मेरे पास है आइडिया, 3 है, जिसमें कपड़ा और खाना जो वेस्ट होता है ऐसे फेंक देते हो, और तीसरा जूता है। बोला यार रमेश जूता वाला अच्छा है, तो वो जूता वाला अच्छा है, तो मेरा जूता इसलिए था कि मेरे एक बार जूता मंगाया था यूएस से, वो जूता जल्दी ख़राब हो गया, क्योंकि मेरा टारगेट है तो उससे मैं 30 से 40 हज़ार रुपये कमाऊँगा, तो उससे 3 हज़ार रुपये भी नहीं आए मेरे। मैंने $100 का जूता मंगाया था 2012 में, तो जल्दी ख़राब हो गया, तो इसलिए मेरे को बहुत मुझे दुख हुआ, तो मैं चप्पल भी फेंकना नहीं चाहता था। वो जूता बहुत ही अच्छा वो था, सोल अच्छा था, पर साइड से पड़ गया, तो उसको मैंने जूता बनाने की कोशिश किया, जूता तो बना नहीं, फिर वो जूता बना नहीं, तो फिर मैंने उसको हटा दिया ऊपर, रिटर्न चप्पल में कन्वर्ट के चप्पल बना के यूज कर रहा था, और लोग सब देख रहे थे, अच्छा लग रहा था, लोग मजा, कई लोग मजाक भी उड़ा रहे थे, कई लोग बहुत अच्छा बोल रहे थे, मेरे कोच ने भी बहुत अच्छा बोला, श्रियांश ने भी बोला बहुत अच्छा आइडिया है। पैसे तो ऐसे मिलते थे कभी कभी ऐसे ही करके, तो फिर उसने एक बार कॉल आया श्रियांश का कि रमेश तुम्हारे कुछ आइडिया, कॉल आया कि हम ऐसे अप्लाई करते हैं। बोला ठीक है, तो हमने पहला अप्लीकेशन किया था जय हिंद कॉलेज, सेकेंड हमने रायसोनी कॉलेज, IIT, IIT अहमदाबाद, ऐसे कंपटीशन अप्लाई करके हमने बोला, ऐसे कंपटीशन से हमने स्टार्ट किया ग्रिंसल को, और अभी तक हमने ऑलमोस्ट क्रॉस इंडिया 1 मिलियन पेयर डोनेट कर चुके हैं, 3 मिलियन का प्लान है अभी डोनेट के लिए, और हमारे 100+ कॉपरेट्स हैं, कॉपरेट्स 100+, और स्कूल्स, कॉलेजेस, कलेक्शन सेंटर ऐसे हैं हमारे, प्लस एक स्किल सेंटर है जहाँ पे लेडीज 6 लेडीज ने ट्रेनिंग दी है उनको, जिस वो साल का 12 से 15 हज़ार पैर बनाते हैं, और जो हमारा जो प्रॉब्लम हमने रिसर्च किया था, जो हर साल 35 करोड़ जूते फेंकते थे यूएन के डेटा के बेसिस पे, और जिसमें से 1.2 बिलियन लोगों के पास चप्पल ही नहीं है दुनिया में, बेयर फुट है, उससे बहुत सारा हो रहा है, और जो जूता हमारा है वो उसको होने के लिए मिनिमम 50 से 100 ईयर लगता है उसको वो होने के लिए, तो ग्लाइन फील्ड में वो करने के लिए, तो इसके लिए हमने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया। अभी करेंट जो डेटा है 23.5 बिलियन पेयर हर साल मैन्युफैक्चर होता है, उसमें से सिर्फ 5% रिसाइकलिंग हो रहा है, बाकी सब लाइन फील्ड में जा रहा है, और हम चाहते हैं कि इसको सर्कल इकोनॉमी की तरह यूज करें, प्रोडक्शन कम से कम हो, और सस्टेनेबिलिटी और इसको रिसाइकलिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉपरेट इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट सभी इसको सपोर्ट करें, और इस सेक्टर को हम बड़े अच्छे लेवल में सर्कल इकोनॉमी की तरह यूज करें, और हम ब्रांड सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए हम इसको ये चाहते हैं ग्रिंसल फाउंडेशन, और हम ऑलरेडी इस पर रिसर्च कर रहे हैं, और भी इसमें क्या क्या कर सकते हैं, कौन से सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं, अपसाइकिलिंग कर सकते हैं हम इस पर, और काम करने आने वाले टाइम में हम इसको मोर बेटर मोर इस पर काम करना चाहते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।
1: क्या पुराने जूते से ऐसा कुछ बन सकता है कि देखने पर पता ना चले और लोग बिना झिझक पहन सकें? जी हाँ, कुछ ऐसा ही होता है, ऐसी चप्पलें बन जाती हैं कि बिल्कुल नई लगती हैं। अब तक 7 लाख चप्पल ये लोग बना चुके हैं। श्रेयंस इस बारे में बताते हैं।
2: तो ये जो आपने सवाल पूछा है कि जो हम पुराना रिसाइकिल करते हैं उसका, जैसे जूता रिसाइकिल किया उसका जो चप्पल बनता है वो एकदम ब्रांड न्यू दिखता है। यही हमारी रिसाइकिलिंग की खासियत है कि ये अपसाइकिलिंग की खासियत है कि आप बता नहीं सकते कि नया है पुराना है। इसको हम बहुत आप कह सकते हैं क्लेवरली करते हैं ताकि बच्चों का फायदा हो, उन्हें नए जैसा जूता मिले। तो जो जूते का पुराना सोल होता है वो नीचे रहता है तो आपको दिखता नहीं।

0: अब एज इट इज पुराना सोल ले लेते हैं, पर जो अपर होते हैं या जिस पार्ट पे आपका स्किन टच होता है वो नया पार्ट होता है। फिर जो लेसेस होते हैं वो हम चप्पल में यूज नहीं करते, उसका साफ करके हम बैग में यूज करते हैं। तो अभी तक हमने 7 लाख से भी ज्यादा ऐसी चप्पलें बना के डिस्ट्रीब्यूट की है और बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स आया है ऑल ओवर इंडिया।
1: अब कैसे जूते दिए जाएं? अक्सर हमारे पास भी ऐसे जूते हो जाते हैं जो अब हम पहनते नहीं हैं, और किसी को देने में भी झिझक महसूस होती है कि पुराने जूते क्या दें। नतीजा ये होता है कि वो जूते कूड़े के ढेर पर जाते हैं, और अगर हम वही अपने पुराने जूते दान कर दें तो वो किसी के बहुत काम आ जाएंगे। कैसे करें ये श्रेयंस बताते हैं।
0: बिल्कुल, हर एक जना अपने पुराने जूते को एक नई लाइफ दे सकता है। हम इधर उधर फेंके जूतों को, या फिर हम हमारे मेड सर्वेंट को दें, या फिर हमारे पास कई बार किसी को देने के लिए नहीं होता जूता, तो जूते इकट्ठा होते रहते हैं हमारे पास। इसका कोई रद्दी में भी हमें कुछ नहीं मिलता है। तो अगर हम ग्रीन सोल फाउंडेशन को ये जूते पहुंचाएं हमारी सोसाइटी से, ऑफिस से, कॉलेज से, तो इन जूतों को हम चप्पल बना के गरीब बच्चों तक पहुंचाएंगे। आप फंड्स भी डोनेट कर सकते हैं जिससे रिसाइकलिंग हो, नहीं तो हमारे पास कॉर्पोरेट फाउंडेशंस भी हैं। बहुत सारे कॉर्पोरेट जो इसको फंड करते हैं इनिशिएटिव को, जो आप जूते देते हैं उसकी कॉर्पोरेट हमें फंडिंग देता है इसको रिसाइकल करके बच्चों तक पहुंचाने की। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े, हमारी वेबसाइट भी है greensoulfoundation.com, उस पर भी आप जा सकते हैं, एक बार पूरा प्रोसेस समझ सकते हैं।
1: धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम सबको ये आदत डालनी चाहिए कि हमारे द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं दोबारा इस लायक बन जाएं कि किसी के काम आ सकें। इससे एक तो किसी का फायदा होगा, दूसरा पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होगा। लखनऊ से फैसल फरीद।
2: SBS हिंदी पर आज हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे लूंगा अलविदा और मिलूंगा बहुत जल्द एक नए दिन, एक नई शाम, एक नए शो के साथ। आखिर में एक मैसेज पढ़ देते हैं। जफर जी लिखते हैं कि फैसल फरीद की ये जो कहानियां होती हैं बड़ी मोटिवेशनल होती हैं, और कीप अप द गुड वर्क। और पब्लिक टॉयलेट पर भी जो आज हमने एक SBS एग्जामिन्स का एक अंश प्ले किया वो भी उन्हें बहुत पसंद आया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी शाम खूबसूरत बनी रहे। इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा। सुन रही SBS हिंदी, मेरा नाम है नबील।